0: मेरे ता जाग पे भाग जिवे खुद रब ने दिता वरदान पैणो। मेरे ता जाग पे भाग जिवे खुद रब ने दिता वरदान पैणो। आओ नी सयो रल दियो बधाइया मेरी गोदी च खेडे इंसान पैणो। तुसी वेखो नी बंदे दी चाल सोनी चाल सोनी चाल सोनी। तुसी वेखो नी बंदे दी चाल सोनी किवें वंडदा फिरे ज्ञान पैणो। दूजे सारे ही जीव ने सिर्फ खांदे पर ए जानदा होर बनान पैणो। आओ नी सयो रल दियो बधाइयां मेरी गोदी च खेडे इंसान पैणो। धन्यवाद।
1: क्या बात है जी मन साहब, क्या बात है जी। एक वखरी ही दुनिया दे विच लै गए तुसी सानू सब नू जी, बहुत बाकमाल है जी।
2: दुख भावुक हो चुके हैं, भावुक हो चुके पात साहब। मेनू लगता भी दू बाद ते मेरे तो भी कोई गल नहीं होनी, ये तो एंड ही हो गया।
1: बिलकुल बिलकुल है जी, क्या बात है जी, बहुत खूब। ते शमी जी, थोड़ा जा जिक्र करना चाहवांगा, चलो समा भी बड़ा तेजी दे नाल भजदा जांदा है, होर 10 मिंट

तक संस्कारी साथ छोड़ते ही बचा दिया हमें बना दिया भ्रष्टाचारी। जो लूट खसूट को कहते हैं कट्टर ईमानदारी, आप ही बताइए आखिर उनसे कैसे कोई निभाई यारी। ते किकली भाई चड्डा साहब भी पा लेंदे है। ते अगे सियासी जड़ा चलो ये एक तरह के तकरार ने इन्हां दे। ते चड्डा साहब कहिंदे ने अगे कि भाई बागी राजसभा मैंबर हुणां ने राष्ट्रपति मुर्मू हुणां दे नाल पहला मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी आप छड़ के भाजपा दे विच शामिल होए राज्यसभा मैंबर ने अज सवेरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे नाल मुलाकात की। राघव चड्डा, संदीप पाठक, रजिंदर गुप्ता, अशोक मित्तल ए चारे जाने आधारित इस वफद ने राष्ट्रपति नूं दस्या कि पंजाब दी आप सरकार उन्हां नूं सियासी बदलाखोरी दा निशाना बनाउण दे लई सरकारी तंत्र दी नजायज़ वरतों कर रही है। मुलाकात तों बाद राघव चड्डा उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते तिखा हमला करदिया कहा कि आम आदमी पार्टी अजकल एक सियासी पार्टी वांग नहीं सगो एक जिल्टड एक्स जिसका दिल टुटिया होवे जां धोखा खादा होवे वांग विहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी बेहद कौड़ी बदलाखोरी की भावना नाल भरी पई है हुई है ते सच्चाई नूं स्वीकार करन दे विच असमर्थ है। चड्डे ने कहा कि जिहड़ी पार्टी कदे खुद सियासी बदलाखोरी दा रोड़ा रोंदी सी अज ओह खुद इस दे सब तो जहरीले रूप दी वरतों कर रही है। असी राष्ट्रपति नूं जाणू करवाया कि किवें दो तिहाई बहुमत दे नाल भाजपा दे विच रलेवें दे संविधानक फैसले तों बाद सानूं निशाना बनाया जा रहा है। उन्हां दावा कीता कि राष्ट्रपति ने उन्हां नूं भरोसा दित्ता कि संविधानक अधिकारां ते लोकतंत्री चोणां दा सत्कार कीता जावेगा। ते गौरतलब यह भी है कि बागी मैंबरां दी इह मुलाकात पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दी राष्ट्रपति दे नाल होण वाली मीटिंग तों कुछ घंटे ही पहलां होई है। दूसरे पासे अरविंद केजरीवाल कहिंदे ने भाई बीजेपी ने लोकतंत्र नूं अगवा कर लिया ते पंजाब उसदा विजय रथ जिहड़ा रोकेगा। आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अज भारतीय जनता पार्टी भाजपा दे उत्ते लोकतंत्र नूं अगवा करन दा दोष ला दिता। उन्हां ने हाल ही दे विच मुकम्मल होईयां पछमी बंगाल विधानसभा चोणां दे विच भाजपा की शानदार जित दे पिछोकड़ दे विच कहा कि पंजाब पार्टी दे विजय रथ नूं रोक देवेगा, पंजाब रोकेगा जी। कहिंदे केजरीवाल ने दोष लाया कि भाजपा ने लोकतंत्र नूं अगवा करके उसका कतल कर दिता। उन्होंने पार्टी के उत्ते चोणां दे विच हेराफेरी का दोष लगाते हुए कहा कि भाजपा ने पछमी बंगाल दे विच उही कीता जो उसने नवी जिहड़ी दिल्ली दे विच मेरे विधानसभा हल्के दे विच वोटां कढ के कीता सी। ते पंजाब दे विच भी वैसे 92 जिहड़े 96 आए सी जी, ते उत्थे भी फिर तां सवाल खड़े उठ सकदे आ भई धक्का हो गया। केजरीवाल ने कहा कि अज लोकतंत्र खतरे दे विच है ते 2014 दे विच नरेंद्र मोदी दे पक्ष दे विच लहर सी ते ओह भाजपा लगातार चोणां जितदे रहे ने। फरवरी 2015 दे विच दिल्ली दे विच उन्हां नूं सिर्फ 3 सीटां मिलियां ते जे ओह पंजाब दे विच सत्ता दे विच आए तां सूबे नूं बर्बाद कर देणगे। उन्हां कहा कि पंजाब दीआं आउण वालीआं विधानसभा चोणां प्रधानमंत्री मोदी दे लई आखरी चोण होणगीआं, पंजाब तो बाद मोदी सरकार डिग जावेगी। क्या बात है जी। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब दे विच आप सरकार दे पक्ष दे विच सत्ता पक्षी लहर है ते हर पिंड प्रशासन वल्लों कीते गए कम्मां नूं मानता दिंदा है। हाल ही दे विच आप छड्ड के भाजपा दे विच शामिल होए होण वाले 7 राज सभा मैंबरां दा जिक्र करदिआं केजरीवाल ने कहा कि सीटां सी पंजाबीआं दीआं सी ते भाजपा ने पंजाब तो ये सीटां खोह लईआं ते हुण सानू सारिआं नूं उन्हां नूं रोकण दे लई काम करना होएगा। पंजाब ने इतिहासक तौर दे उत्ते विदेशी हमलिआं नूं रोकिआ पर इस वार दुश्मन अंदर ही है, बाहरों नहीं कहिंदे होणा। पंजाबीआं नूं इत्थे पंजाबी आ जांदे ने जी जान मन पढ़दे वी इह गल हो रही है महसूस कि जदों तुहाडे निजी लालच ने सारियां चीजां ने तो उत्थे पंजाबियां नूं मूहरे लिया के खड़ा कर रहे हो ते जदों पंजाबी ना पढ़ना होगा ते ना धरना होगा उहदी गल करदे आ ते धरने उदित उसे तरह बरकरार नहीं उदों पंजाबी नहीं दिखदे। पंजाबियां नूं ही उन्हां नूं रोकना होएगा। केजरीवाल तों इलावा पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने भी कपूरथला हाउस दे विच इकट्ठे होए सूबे दे विधायकां नूं संबोधन कीता। इस तों पहला मान ने राष्ट्रपति भवन दे विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे नाल मुलाकात कीती ते उन्हां सूबे दे उन्हां 6 राज सभा मैंबरां दी मैंबरशिप खत्म करन दी जिहड़ी अपील कीती जिन्हां ने आप छड्ड के भाजपा दा पल्ला फड़िया
ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2027

0: ரேடியோ அடி.
1: हां जी, सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम महफिल मित्रां दी लेके मैं समरजीत सिंह शर्मी तुहाडी सेवा च हाजिर हां। तुसीं सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज, आवाज दी दुनिया दे दोस्तों। अज दुआबा रेडियो लगभग मालवे वाले पासे नूं खिसकिया पिया, पर बहुता मालवे च भी है नहीं। मेरी मुराद है कि पौंग डैम तो सीधा ही अज नंगल डैम दे उत्ते पहुंच गए हैं। नंगल दी खूबसूरत धरती तो असीं रूबरू हो रहे हैं।

0: में था मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यही अपने सफर में गुम कहीं दूर।
1: ओहो, ये लगता है कि फोन कॉल ड्रॉप ही हो गई है दोस्तों। इतना हुण कह लो भी बस दी गल नहीं, इन्ना खूबसूरत नगमा जिहड़ा है वह चलता चलता बंद हो गया, ते ये दुखदाई स्थिति है। ते आपां इधरों कोशिश करते हैं कि इधरों तारा जोड़ के उन्हां नाल तालमेल हो जाए। जी दुबारा जुड़ रही है तार उन्हां दे नाल। जी वेलकम बैक जी, वह कॉल ड्रॉप हो गई सी जी। जी
2: मामला गड़बड़ हो गया, नेटवर्क मेरे बड़ा जेल है नाल मेरे
1: जी,
2: ओ जैमर चला लेंदे इस टाइम ते जेडी नॉर्मल कॉल ओ दा फिर हाल होना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी,
2: चलो जी। यूं ही अपने अपने सफर में गुम कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, यूं ही अपने अपने सफर में गुम कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था।

जाने वे, जो सी पीड़ पर आई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

विस्फोटे इकट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखा कर बेसमेंट सब भर ले। रजनीये नू पता नहीं लगना, रजनीये

कई कई दिन बेहिसाब देख ले, तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

0: डॉक्टर भी हो। मैं जे निधि सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो, MBBS हो, फिर तुसी ट्रैक बदलते हो, फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी, ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
1: डॉक्टर बनने की जेड़ा सुपना सी वो एक्चुअली जी मैं गल कह रहा जी मेरे पेरेंट्स नहीं सी मेरा सुपना नहीं सी जस्ट दैट कि उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे अपनी क्लास च पिछे वाली कतार च ना हो अगली कतार च रहे। सातवीं अठवीं तक यहीं चलता रहा खेडों से भी ठीक सगा
0: हाँ
1: खेड खूड भी ठीक
0: जी
1: लेंदे सी। जिहड़ी
0: ठीक
1: गल मैं आखी कि अठवीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों को बड़ा हवा बनाता साढ़े टाइम च अठवीं बोर्ड की होंगी
0: है
1: सी
0: अठवीं बोर्ड दी। हाँ
1: कहते
0: जी
1: जी बोर्ड का पेपर है तो यदा चंगा तुम्हें करना ही करना है
0: ये
1: इसका
0: तो
1: कोई वो है ही नहीं यदा हल ही नहीं है।
0: हाँ जी हाँ
1: अठवीं च मेहनत की उदों यही गल्ला कही गया कि जी अठवीं पास कर लो फिर तुम्हें लैके जावे कितने असं भी नाल करा
0: जी
1: खो
0: वाह
1: गई पास हो गई अठवीं संभव
0: ठीक है।
1: नौवीं। अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग ने न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो बुक्स वगैरह जीके की बुक्स है या होर कोई कंप्लीट
0: अच्छा
1: डिस्कशन की
0: अच्छा
1: बुक्स
0: जी
1: है। यह हमेशा आदत साढ़े घर से कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी पेपर साढ़े को तीन लैंगुएज के आते
0: ये
1: आते
0: प्लस
1: सी
0: पॉइंट्स
1: ये प्लस पॉइंट एक
0: मिलते।
1: ग्रूमिंग की जी मैं गल आ रहा
0: हाँ जी हाँ
1: सी
0: जी
1: कि
0: ठीक
1: तीन
0: है
1: तीन लैंगुएज के पेपर साढ़े घर से आते सी हिंदी पंजाबी इंग्लिश तीन शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते हो ते फिर 9th 10th होया तो बायो च इंटरेस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के वेख लेंगे। 10th दे विच जो क्लियर होया तो आई हैड प्रिपेयर्ड माई माइंड कि बायो लैनी है कि डॉक्टर जड़ा है बनना है किसी ने थोपिया नहीं
0: अच्छा
1: सपना
0: ठीक है ठीक
1: पेरेंट्स
0: है।
1: का सीगा बट उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है उदों तक माइंड
0: आप
1: बन
0: ही
1: गया
0: तुसी सोच
1: बिल्कुल
0: अपना इन्हों अपना सपना बना लिया।
1: बिल्कुल कि बनना हैगा मेडिकल ले
0: जी
1: ली
0: जी जी
1: नाल थोड़ा मैथ्स इंटरेस्ट सी नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली
0: क्या
1: उदों
0: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड्डिया कोई नहीं दोनों भी नाल ही रखिया
1: उन्होंने दिनों जो जे मेरे फ्रेंड से वो एनडीए का पेपर देने जा रहे थे
0: हाँ जी
1: मैं
0: हाँ
1: कहा
0: जी
1: कि चलो पता नहीं डॉक्टर बनागे नहीं बनागे
0: ठीक ठीक हाँ जी
1: पेपर दे चुके थे एनडीए का पेपर भी देने चले गए
0: हाँ जी
1: रब दी मेहर से दोवें जड़े हैं वह प्रीलिम्स क्लियर हो गया था डॉक्टरी का क्लियर हो गया
0: क्या
1: उस
0: बात है।
1: वेले मतलब चीज़ा वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुम दोवें एक साथ
0: सही
1: टेकअप
0: ट्रैक पे
1: करो
0: जा रहे थे तुसी।
1: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं वो सामने ये ऑप्शन होंगे ने बैंकिंग के
0: जी।
1: जिस किसी को लगता है कि बैंकिंग से जाना है वो कॉमर्स के थ्रू अपनी तैयारी उस तरह की कर सकता है किसी को लगता है सीए बनना है मैं
0: सारा
1: किसी को
0: जोड़ा
1: लगता
0: है
1: है इंजीनियरिंग करना है
0: बिल्कुल
1: दैट इज द स्टेज जो 9th 10th लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो प्लस वन
0: बिल्कुल
1: के टेक ऑफ करते हो उस तो
0: जी
1: बाद
0: जी
1: भावें सीए बनो इंजीनियर बनो
0: हाँ
1: टीचर
0: जी हाँ जी
1: बनो अपने डॉक्टर बनो आर्मी से जाओ पुलिस से जाओ वो ताड़ी जड़ी है उस वेले थोड़ा डिसीजन लेना जरूरी होता है तो दोनों जो मेरे क्लियर हो गए तो बेटर वॉज कि चलो ठीक सपना वो जाना सेगा
0: हाँ जी हाँ
1: मेडिकल
0: जी
1: मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल
1: अटैम्प्ट और सिविल सर्विस इस करके बनया क्योंकि जिम्मे मैं दस्या कि जीके शुरू तो अच्छी सी
0: हाँ जी
1: पेपर रीडिंग बहुत चंगी एक आदत जो बच्चे च पै सकती होवे
0: हाँ जी
1: और मैं अपना जो सिविल सर्विस का करियर मैं टोटली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैं सिविल सर्विस की तैयारी की थी वो जो बेस है थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा बचपन तो
0: शुरू
1: ही
0: तो बढ़िया
1: तैयार
0: है
1: हो
0: बिल्कुल
1: चुका सेगा एंड उस आदत के कारण जरा से सिविल सर्विस आंदा डिसीजन होया कि चलो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बेस
0: जी जी
1: चंगा
0: जी
1: बनया होया
0: बिल्कुल
1: सेगा
0: ठीक है
1: तो किसी बच्चे को अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो एक बहुत ही बेसिक स्टेप जरा प्रीलिमिनरी स्टेप मैं आखाँगा कि पेपर रीडिंग की आदत जो बाद भी बन जाए इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज उदों भी बन जाए तो ये बहुत ही चंगी आदत है
0: जी
1: तुम
0: जी
1: आस
0: जी
1: पास की अपनी सराउंडिंग्स देश दुनिया की खबरों तो भी तुम रेंदे हो
0: अपडेटेड रहना है
1: अपडेटेड रहते हो तुम अपने शहर की खबरों तो भी अपडेटेड रहते हो तो शहर
0: जी
1: से
0: जी
1: की हो रहा है तो कंट्री से की हो रहा है दुनिया से की हो रहा है
0: बिल्कुल
1: एंड सिविल सर्विस से जाओ या ना जाओ बट एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जरा बन सकते हो
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी वो पहली शर्त है वो तो चाहिए चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसी उधर सिविल सर्विस दे विच भी एन वधिया शाइनिंग कलर्स दे नाल उधर अपीयर होए ते मुड़ के हुण तुसी बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेवावां दसूहा दे विच निभा रहे हो, ते इसे ए करियर तो डाके बहुत दूर तक जाण वाला है, ते ये जिहड़े बच्चे आ साडे भविख आ देश दा, तुसी एक उहनां दे लई रोल मॉडल हो। जदों तुहानूं मिलदे आ बच्चे भी तुहानूं मिलदे होणगे स्कूलां च तुसी जाते हो जां कई वारी बच्चे तुहाडे कोल आउंदे ने, किस तरह दा तुहानूं ओवरऑल एक उहनां दा प्रभाव तुहाडे उत्ते पैंदा है कि ये जिहड़ी पीढ़ी आ ये किन्नी क जागरूक आ, किन्ने क बच्चा जिहड़ा है किस लैवल ते खड़ा है लग जांदा पता कि ये जिहड़े मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्चे आ स्कूल गोइंग बच्चे आ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ